प्रायोजित दुख क्या मेघ बढ़ता संशय है. पुत्र माता पिता को रक्षा नहीं करते. आर यू वॉरिड अबाउट होम्स एंड फैमिलीज वेयर द पेरेंट्स डोंट टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन. दे अलाउ देयर चिल्ड्रन ऑफ कोर्स यू नो टू फॉलो द रॉन्ग पाथ एंड यू नो रक्षा नहीं करते हैं व्हेन चिल्ड्रन आर बीइंग यू नो टेकन एडवांटेज ऑफ मदर एंड फादर डज नॉट लुक एट दैट. आर यू वॉरिड अबाउट दैट. क्या संताप है. व्हाट इज द कॉज ऑफ योर फियर. वही तुम पुरुष खाने की वाले राक्षस को निर्दय सबको क्लेश रहित करते यहाँ निषाद है. आर यू वॉरिड अबाउट दोज हु डू नॉट हैव एनी कॉन्शियंस व्हेन इट कम्स टू डूइंग राइट थिंग एंड ऑफ कोर्स क्लेश रहित है. दे कॉज पेन टू देमसेल्व्स एंड टू अदर्स. क्या कुकर्म मार्ग में सरस्वती जी की याद के जो ब्राह्मण को माने घर लक्ष्मी को देवी को राजा को लोग ब्राह्मण अपमान को करने लगे. वेल इट डिस्क्राइब्स ऑफ कोर्स दैट यू नो आर यू वॉरिड अबाउट दोज हु यू नो लक्ष्मी डज नॉट सिट इन सच ए हाउस एंड दे गेट रॉन्ग एडवाइस. व्हाट इज इट दैट कॉज सच ए पेन. कलयुग के क्षत्रिय हो गए हैं उनके राजा. बट यू आर हियर एंड टेल मी व्हाट इज द कॉज.

0: नहीं बात अमृत पिलाने से क्या
1: लाइन ऑफ दैट भजन हैव कॉपी गंगा नहाने रीड वन रीड
2: गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया
1: आई वेंट टू द गंगा

विस्कृत वंशित शाम पिता प्रमाणित है लाइक दिस ऑफ कोर्स कलयुग गिव दिस वॉज गिवन टू ऑल ऑफ दिस एंड फ्रॉम हियर ऑन व्हाट हैपन्स टू राजा परीक्षित वी विल हियर टुमारो मॉर्निंग व्हेन वी मीट अगेन श्री कृष्ण गोविंद चरणाविंद्र श्री मधुसूदन गोविंद बाके बिहारी लाल की जय ओम इति

0: FM, आपका धर्म आपका स्टेशन रेडियो जागृति।
1: तुझसे गुजारिश है मुझसे दूर कहीं ना जा, मेरी धड़कनों में बसी है तू, आ मेरे गले लग जा।

लगता है। जो गले लगा रहता था अब हाथ भी नहीं करता, जो मिलने को तड़पता था अब बात भी नहीं करता, अब बात भी नहीं करता।

म्यूजिक फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है एंड बिफोर दैट बंधु फ्रॉम कॉकटेल टू टू वेरी एनर्जेटिक वन टू कीप अस डांसिंग ऑन दिस ट्यूसडे आफ्टरनून. इट्स ट्यूसडे बट इट्स ओके. लेट्स मेक इट अ लॉर्ड हनुमान डे. गुड वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जी. व्हाट मोर कैन यू आस्क फॉर. रेडियो जागृति 102.7 FM. Your work.

0: Sabqua Sampraday, tu mi ol tekyo sitsa.
1: एक बार बोलो सर वृंदावन बिहारे लाल की जय सबको सीताराम एवरीवन जय सीताराम माय डियर फ्रेंड्स एंड अ वार्म वेलकम ऑफ कोर्स टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू एंड दिस इज नंबर 7 दिस करंट द 7th सेशन ऑफ कोर्स ऑफ 20 सेशंस ऑफ श्रीमद् भागवत कथा ऑन बिहाफ ऑफ श्रीमान दिनेश राम सुरेश महाराज जी एंड हिज दुल्हन दिनेश देयर एक्सटेंडेड फैमिली brothers, sisters, nephew, nieces, all who are seated here this evening, it's indeed our pleasure to welcome you to their home, to their wonderful home, well, temporary home. Dinesh's ultimate home is in another continent, but his temporary home, of course, as he said, family home, to these wonderful evenings and sessions of Bhagavad Katha. Permit me this evening, of course, to offer my humble salutations to the feet of the holy ones. नमो ब्रह्मन् देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगद्धीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः टू द फीट ऑफ द होली ब्राह्मिन्स ऑफ कोर्स हुज फीट सैंक्टिफाई दिस दिस वंडरफुल स्पॉट ऑफ कोर्स बाय देयर मेयर पर्संस माय ब्रदर पंडित रोहित पंडित नरेश पंडित ईश्वर को परफॉर्म पूजा पंडित विष्णु माय गॉड सन पंडित आनंद जी हु इज हियर वेल पंडित आनंद महाराज जी रिटायर्ड पब्लिक हेल्थ ऑफिस इंस्पेक्टर पंडित आनंद शर्मा सन ऑफ पंडित सत्यनारायण शर्मा Pandit Satesh Maharaji and his two wonderful sons, Pandit Sarvesh and Pandit Satyam, my Gocharan, all of those Gocharan, the President General of the Sanatan Dharma Mahasabha, one of course who needs no recognition, Pandit Krishna Rambali and his Dharampatni, also the President of the Monroe Road Shiv Mandir, this evening him. His wonderful family, all other noble and honored Brahmins, members of group on stage, Maniram did bhajans for us this evening. Naresh is seated in the crowd, so he will sing, of course, do some beautiful bhajans for us after the ladies of Ganesh Mandir, Vash, everybody's here.